लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारी स्थिपुरंदकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव

0: मेलायु मायुका लागि त सुनसरी गाउँपालिका योमी मस्तज जरुरी सूचना झुमु बेला खिमरिदे गरम ओबोदरी जेउ बेला सुनो भोरी बतास ओचुलिरी जेउ आउ बेला क वन जंगल ल मे लागिने मस्तज सम्भावना ताए आउ ये गिमी प्राकृतिक सम्पदा र सक्षेप्त ज सक्षम नारी वातावरण मिलेने लघ्यता असर किएने रि उमूल र थाउने भुछे ताने वायुमण्डल ल कार्बन मस्तज तानागे भने जलवायु परिवर्तन ल असर सकिने सुनो नाखार नामे ल मे लागिने सज जिमी गिमी लापरवाही सुनो चाउसो खेलगेमा दुख जिन्दगी को ठेल मेला की नाटी जन धनी ने खेपा छुट्टी ताऊ हो होकाई वन जंगल सर मेरा आयुरी बानी एमएल एमए हो सोचा मेला लिउ सोतर पोतर राले पार दे हटे
1: सलाई लाइटर स्याउला ले सचाउने चीज राले जबाङजा र यामा देने पोल गेने या इतौ चीज र रहिदे वन जंगल याले के बाबा या
0: पिकनिक वन भोज बाको मे सचाउसु छिन्नी मेले चाउ सोसाई देखि खनाले वन जंगल ओ सोचा मिदै के बारीको चुरोट विधि ओरे बनै कोबा
1: नान्थार नाम्लो लिजौ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बने हुने हाल अनुगमन दुने व्यवस्था
0: गेछो छामेला खोरे लाउसी खोलिए होलिदे करिम गाई गेजो मेके लाइजु अब नजिरे बनाए गेम गेल गेजो मेके मलाई अरूले
1: वन जङ्गल जुडिसियो घेङबारी ल बालीनाली कुचिला चुली यात्रा चाउसो छिनी ने चाउसो सैदेकी खेले
0: वन जङ्गल मेला गेमाइए
1: ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सुनसरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका कार्यालय ल खबर गिरिए
0: सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा।

0: रेडियो तारा संसार 99.4 एकता को आवाज, समानता को आवाज, निष्पक्ष सक्रियता को अभ्यास।
1: रेडियो तारा संसार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
2: जीवन गंगा।